0: ने डीजे सेट एज वेल एज रोविंग एक्ट्स वर्कशॉप्स एंड मोर फ्यूजन बोटानिकल दिस सैटरडे इन द बोटानिक गार्डन्स फ्रॉम 4 PM.
1: Wagga Wagga City Council is a sponsor of Yes FM.
2: Ma'am from Promec Australia, and I listen to Yes FM.